सुख शांति नहीं नहीं शांति नहीं। सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यम। शिव शिव शिव शिव सुब्रह्मण्यम हर हर हर हर सुब्रह्मण्यम। ओम शिव शिव शिव शिव सुब्रह्मण्यम हर हर हर हर सुब्रह्मण्यम। शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम। शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम। शरशरण भव सुब्रह्मण्यम हरिशरवण भव सुब्रह्मण्यम। ओम शिव शरवण भव सुब्रह्मण्य हरिशरवण भव सुब्रह्मण्यम। शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्य हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम। शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्य।

0: ना कोई अपना नहीं।
1: भगवान बिना कोई अपना नहीं।
0: भगवान बिना कोई अपना नहीं।

0: पकड़े दुख मिटे तेत राम नाम। पकड़े दुख मिटे तेत राम नाम।
1: पकड़े दुख मिटे तेत राम नाम।
0: अव समुद्र सुख जनाव तेत राम नाम।
1: अव समुद्र सुख जनाव तेत
0: परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम।
1: परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम।
0: अत जनर जीवन धन एक राम नाम।
1: अत जनर जीवन धन एक राम नाम।
0: भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम।
1: राम राम राम
0: राम राम राम राम राम राम।